देसो गमत सूरा कबीरा सुता क्या करे जाग रोए पै दुख जागा बासा गोर मै जो क्यों सुवे सुख कबीर सुता क्या करे उठ के ना जपे मरारो एक दिन सुमन होए गो लांबे गोड पसारो कबीर सुता क्या करे बैठा रो अर जागो जाके संगत बिछरा ताही के संग लागो कबीर संत की गैर न छोड़।

अब कर अब करता सोए तालो, पाछे कछु ना होएगा जो सिर पर आवे कालो। कबीर ऐसा जंत एक देख्या जैसी तोई लाख, दीजे चंचल भोगना मत ही ना पाक। कबीर मेरी बुद्ध को जमना करे तिस्कार, जिन्हें जमना सिरजया सो पजया परवदगार। कबीर कस्तूरी पया पवर पै सब दास, ज्यो ज्यो भगत कबीर की त्यों त्यों राम निवास। कबीर गै गच भरियो कुडंब के कांठे रहो गयो राम, आए परे

अब हट का ताजमान का अभिमान, ऐसा कोई दास होए ताए मिले भगवान। कबीर रोड़ा हुआ ता क्या पया पंथी को दुख दे, ऐसा तेरा दास है जो तरनी में खे। कबीर खे हुई तो क्या पया जो उड़ा लागे अंग, हर जन ऐसा चाहिए जो पानी सरबंग। कबीर पानी हुआ ता क्या पया सिरा तत्ता हुए, हर जन ऐसा चाहिए जैसा हरी हुए। ऊंच पवन कन कामनी शिखर तजा फहराए, ताते पली मधुकारी सत्संग गुण गाए। कबीर पाटन ते उजर पला राम भक्त जेठाए, राम स्नेही बारा जामपुर मेरे पाए।

बिखे को सिमरे हर नाम कबीर थूनी पाई थित पई सतगुर बंदी धीर कबीर हीरा बनजया मान सरोवर तीरा कबीरा हर हीरा जंजौरी लैके मांडे हाट जब ही पाए पारखू तब हिरन की साट कबीर कांबरे हर सिमरिए ऐसा सिमरो नित अमरा पुरबासा करो हर गया बहुरो बित कबीर सेवा को दुए पले एक संत एक राम राम जो जाता मुक्त को संत।

सके कोई नीरा, भाग बड़े ते पायो तू पर पयो कबीरा, कबीर पर बाते ताए किसे त्यो ए हो किसे शरीरा, ए दोए अख ना किसे जो गैर हो कबीरा, कबीर कोठी काठ की दे दिस लागी आग, पणत पणत जल मुए मूर्ख उबरे भाग, कबीर संसार दूर कर काज दे बहाए, बावन अखर सोध के हर चरनी चित लाए, कबीर संत ना छाडे संती जो कोटक मिले संत, मलया गर्भ जंग मांग भेड्यो ता शीतलता ना त्यंत, कबीर मन शीतल पया पया ब्रह्म ज्ञान, जिन जोला जग जारिया सो जन के उदक समान, कबीर सारी सिरजन हार की जाने नाही कोय, कै जाने आपन तरी कै दास दीवानी होए, कबीर पली पई जो पाओ परिया दिसकी सा पूला, ऊर गरक पानी पया जाए मिलो टल कूल, कबीरा तू रस के लके पूरिया बांधी दे, दिवस चार के पेखड़ अंत खे की खे, कबीर सूरज चाल के उदे पई सब दे, गौर गोविंद के बिन मिले पट पई सब थे, जय अनपो तैब नहीं जब पो तो तै हर नाहे, कहो कबीर बचार के संत सुनो मन माहे, कबीर जिनू कुछ जानिया नहीं तिन सुख नींद बहाए, अमुना पूजा पूजना पूरी परी बुलाए, कबीर मारे बहुत पकारिया पीर पकारे और, लागी चोट मरम की रहो कबीरा ठोर, कबीर चोट सहेली सेल की लागत लय उसास, चोट

बिन संगत यो मानी होए गई प्रचार, कबीर निर्मल बूंद काज की लीनी पू ममलाए।

कौन हवालो, कबीर जोर किया जो सो जुलम है, ले जवाब खुदाए दफ्तर लेखा नीक से मार मुहे मुखाए, कबीर लेखा दे ना सोला जो दिल सूची होए, उस सच दीवान में पला न पकड़े कोए, कबीर धरती और आकाश में दोए तू बड़ी अबद, खट दर्शन सुन से पर औचुरासी से द, कबीर मेरा मुझ में किश नहीं है जो जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे मेरा, कबीर तू तू करता तू वा मुझ में रहा ना हूँ, जब आप पर के मिट गया जद देखूं तत तू, कबीर बेकारो चत वे झूठे करते आस, मनोरथ कोई ना परिपूरे हो चाले उठ नरास, कबीर हर का सिम जो करे सो सुखी आसन।

के मूल कबीर राम ना जाने हो नहीं पालो कटक कुंडम्ब तम देही में मार गए हो बार भैना बम्ब कबीर आखी केरी बाट के पल पल गई बहाए मान जंजाल ना हो छोड़े जम दिया दमा मान आए।

पंखी खेल करंता कबीर दाता तर्व दया फल उपकारी जीवंत पंखी चले दिशा भरे बिरखा सफल फलंत कबीर साधु संग प्राप्ति लिखिया हुए ललाट मुक्त पदार्थ पाइए ठाक न अवगट काट।

एक राय दे रह गए एक राधी गए उजाड़ो फिदा चार गवाया हंड के चार गवाया सम लेख रब मुकेशिया तू आहो केड़े कम फिदा दा दरवाजे जाए के क्यों डिठो कड़ियालो एहो ने दोसा मारिए हम दोसा दा क्या हालो कड़िए कड़िए मारिए पैरी रहे सजाए सोहेड़ा कड़ियाल जो दुखी रहन बहाए मुंडा हुआ छेक फरीदा कंबन लगी दे जे सोबर या जीवड़ा पीतन खुशी खे फरीदा बार पराये बैसला चाय मुझना दे जे तू ए वे रखसी जो शरीरों ले

अति मांगड़ो फरीदा कोठे मंडप मारिया उसार दे भी गए कूड़ा सौदा कर गए गोरी आए पे।

सप ढूंढे क्या हुए चिक्कड़ डूबे हाथ फ्रीदा नंदी कंतना रावे वड्डी थी मियासो।

पञ्चवक्तं सीत ओठ फरीदा ऊंजू साज सुबलवाज गुजारो जो सिर साई नानवे सो सिर कप उतारो जो सिर साई नानवे सो सिर की जे काए

अगे दोषित पिया सुनिए हूल पहे कहा। एक रानो सब छोई आई एक फिर देवे परवाह। अमर जे की त्या दुनी बेच छे दरगाह है उगा। फरीदा दरिया वे कन्ने बंगला बगला बैठा केल करे दे हंज को अचिंते बाज पे तस केला रब दे केला विसरिया। जो मन चित न चेते सन सो गाली रब किया। साढ़े त्रै मन देर चले पाणी अन आयो बंदा दुनी बिच वत सूणी मन। मलक तो मलकल मौत ना याम सी सब दरवाजे पन तिना प्यारिया पाइया अगे दिता बन। वेखो बंदा चलिया चौंजणिया दे कन। फरीदा अमल जे कीते दुनिया बिच दरगाह आवे कम। फरीदा हो बलहारी तिन पंखियां चंगल जिना वास। कक्कर चुगन थल बसर राबना छोड़न पास। फरीदा रुत फिरी वन कुंभिया पत चढ़े चढ़ पाए।

है एता गाब आकाच नाय मावत बेष्टा हस्त किरम उधर पर्यो है दै दिशताए मा बिख्या को पर तन छीन अज्ञान हरियो है जो बड़ा बीत जरा रोग ग्रस्यो जम दूतन डन मृत मरियो है अनक जो न संकट नरक पूंछ सासन दुख गर्द गरियो है प्रेम भगत उदरे से नानक कर कृपा संत आप करो है गुण समूह फल सगन मनोरथ पूर्ण होई आस हमारी औखद मंत्र तंत्र पर दुख सर्व रोग खंडन गुरकारी काम क्रोध मत मद मत सर तृष्णा बिनस जाए हर नाम उचारी इशनान दान तापन सोच किरिया चरण कमल हृदय प्रभ तारी साजन मीत सखा हर बंदप जी दान प्रभ प्राण अधारी ओट गही स्वामी समर्थ है नानक दास सदा बलहारी आवत कट्यो ना जात प्रेम रस चरण कमल संग दामन बंद्यो ना जात बिदे मन दर्स मग पावक तजर्यो ना जात रहो जन तूर लग निरना

तरोन्दरम तर गुण गावे सुन काद आद जन काद जुगो लग तन तन तन गुर जन्म सके सो पलो जाग पताल पुरी जयकार तुन कब जन कलब खाण्यो हर नाम रसक नानक गुर राज जोग ते माण्यो सात जोग ते माण्यो छलियो बल बावन पायो त्रेते ते माण्यो रांग रघुवंश कहायो द्वापर कृष्ण अमरार कंच कृतार्थ कियो उगर सैल क्यों राज हबे भगते जन दियो काल जोग प्रमाण नानक गुर अंग अमर कायो श्री गुरु राज अब चल अटल आद पुरख फरमायो गुण गावे रविदास भगत जय देव तलोचनो नामा भगत कबीर सदा गावे समलोचन भगत बेण गुण रवे सहज आत्म रंग जमाड़े जोग त्याल गुर ज्ञान बिना प्रभ अवर ना जाने सुख देव परिखत गुण रवे गौतम रेख जस गायो काल कब कल सुजस सुजस नानक गुर नित नवतम जग छायो गुण गावे प्याल भगत नगाद पुंगम पजंगम महादेव गुण रवे सदा जोगी जत जंगम गुण गावे मन ब्यास जिन भेद व्याकरण बचारे ब्रह्मा गुण उचरे जिन हुक्म सब श्रेष्ठ सवारे ब्राह्मण खंड पूर्ण ब्रह्म गुण निर्गुण समझाण्यो जप कल सुजस नानक गुर सहज जोग जिन वाण्यो गुण गावे नवनाथ तन गुर सच समायो माता ता गुण रवे जिन चक्रवे कहायो गुण गावे बल गाओ संत पताल बसंतो परथर गुण उचरे सदा गुर संग रहंतो दुर्बा प्रूर अंगरे गुर नानक जस गायो कब कल सुजस नानक गुर काट काट सहज समायो सोये महल्ले दूजे के को मुकार सतगुर प्रसाद सोई पुरख तन करता कारण करतार करण समर्थो सात गुरु तन नानक मस्तक तुम तरियो जिनो हथो तरियो मस्तक हथ सहज अमियो उठो सज सुर नरगण मन कमयो आगाजो मारियो कंठ काल गर्ज ताप तलियो बर्ज पंच भूत एक कर राख ले समझ

जाए दर्श द्वारो ओए जो सेवे शब्द सार गाखड़ी बिखम कार ते नर पव उतार किए नरबार सत संगत सहज सार।

दृष्ट तरत ताम हरण दैन अग पाप परनासन शब्द सूर बलवंत काम और क्रोध बनासन लोभ मोह वश करन शरण जाचक प्रतपालन आत्म रस संग्रहण कैन अमृत कल टालन सात गुरु कल सात गुर तिलक सत सत लागे सोते परे तरे गुर जगत फिरन से अंगरो राज जोग लैणा करे सदा अकल लिव लै कारण छो ईशा चारो ब्रह्म सपूर ज्यो डिबे खवे कस बिमल बिचारे एह तत जाड़ियो सर्वगत अलख बडाली सहज पाए संचो किरम अमृत कल बाणी गुरगम प्रमाण ते पायो सत संतो ग्रहज लयो हर परस्यो कर समूल वे जन दर्शन लेने पयो मन विसास पयो गैर गो हदरत दियो गरल दास तन नठियो अम्यो रत अंतरगत पियो हृद विगास जाग्यो अलख कल तरी जुगंतर सतगुर सहज समाध रव्यो समान निरंतर

करो गुरु सत कब नाल कहे जिन गुरु देखे न कियो ते अकत संसार में गुरु गुरु गुर कर मना मेरे तारन तरन समर्थ कल युग सुनत समाद शब्द जिस केरे फुल दुखन नास सुखदाय सूरो सो तरत त्यान बस्त तेरे पूर्यो पुरख हृदय हर सिमरत मुख देखत अग जाए परेरे जो हर बुद्ध हृदय से

उस प्रेमन के वंश सिद्ध क्यों वेद मलायो पूर्ण पो मन ठोर बसो रस बास से जो दयन दिसतायो गोविंद बाल गोविंद पुरी समझलन तीर विपास बनायो गयो दुख दूर बरखन को सो गुरु मुख दे गुरु सुख पायो समरथ गुरु सिरथ तरयो गुर कीनी कृपा हर नाम दियो जिस देख चरण अगन हरयो निस पासर एक समान ध्यान सो नाम सुने सुत पान रयो पान दास सो आस्त जगतर जगतर गुरु की पारस पेट परस करयो रामदास गुरु हर्षत कियो सम्राट गुरु सित हर सिरत तरयो अब राखो दास पाठ की लाज जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की हर नाक्ष फारे कर आज होना द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी शीन व्रत दिन बहु साज सोदा माया पदा ते रखिया गणता गणका परत पुड़े ते काज श्री सतगुर सुप्रसन्न कल होए राखो दास पाठ की लाज चोलना गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप प्राणियो शब्द हर हर जपे नाम नवद अपे रसन एनस रसे सत कर जानियो फोन प्रेम रंग पाये गुरमुखो त्याये अन मार्ग तजो पजो हर ज्ञानियो भजन गुर रिद तरो पंच तू पू बस करो जन्म कुल उदरो द्वार हर मान्यो जो तो सब दुखे त्यो तुम बछावो गुर गुर गुरु गुर गुरु जप प्राणियो गुरु गुर गुरु गुर गुरु गुरु जप सत कर अगम गुण जान दान हर मन तरो ध्यान एनस करो बचन गुर हृदय तार फोन गुरु जल बिमल था मजन करो संत गुरसिख तरो नाम सच राम रंग सर सदा निरवैर निरंकार निरभयो जपे प्रेम गुर शब्द रस करत दृढ़ भगत कर मुक्त मन परम तजो नाम गुरमुख पजो गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप सत कर गुरु गुर गुरु करो गुरु हर त्याय उदत गुर गैर गंभीर बेअंत हर नाम नग हीर मन मिलत लिवलाइए फोन गुरु परमल सरस करत कंचन परस मैल दुरमत हिरत शब्द गुरु त्याये अमृत प्रवाह सुरकंत सद द्वार जिस ज्ञान गुर बिमल सर संत सिख नाइए नाम निर्वाण दान हर उर तरो गुरु गुर गुर कहो गुरु हर पाइए गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप मन रे जाकी सेव सेव सद साधक सुर असर गण तरे तेतीस गुर बचन सुन कन रे फुन तरे ते संत हित भगत गुर गुर कह तरियो प्रहलाद गुर मिलत मुन जन रे तरे नर दाद सनकाद हर गुरमुख तरे एक नाम लगत जे रास अन रे दास बेनत कहे नाम गुरमुख ले गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप मन रे श्री गुरु साहेब सब पर करे कृपा सात जोग जिन त्रु पर श्री प्रहलाद भगत उरियन हस्त कमल माथे पर तरियन अलख रूप जी लिखिया न जाई साधक सिद्ध सगल सराई गुर के बचन सत जी तारो मानस जन्म दे निस्तारो गुर जहाज केवट गुरु गुर बिन तरिया ना कोय गुर प्रसाद प्रभ पाइए गुर बिन मुक्त ना होए गुरु नानक निकट बसे बनवारी तिन लेना थाप जोत संगसारी लैले पंथ तरों का दी किया अमरदास पले को दिया
ਤੇਨਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਸੋਢੀ ਥਿਰਤ ਪਿਓ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਕੇ ਨਿਧਰ ਪਿਓ ਅਪਿਓ ਹਰ ਨਾਮ ਕੇ ਨਿਧਰ ਦੋ ਜੁਗ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਕਲ ਫਲ ਲਈਨ ਮੰਦੇ ਸੋਚਨਾ ਸੁਖ ਪਾਵੇ ਪਰਮਾਨੰਦ ਗੁਰਮੁਖ ਕਈਨ ਪਰਤਖ ਦੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਵਾਮੀ ਆਦਿ ਰੂਪ ਪੋਖਣ ਪਰਣ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰ ਸੇਵਲਖ ਗਤ ਜਾ ਕੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਬਾਣੀ ਸਾਧੂ ਜਨ ਜਪੇ ਕਰ ਬਚਿਤ ਚਾਉ ਆਨੰਦ ਨਿਤ ਮੰਗਲ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਫਲ ਸੰਸਾਰੋ ਸੰਸਾਰ ਸਫਲ ਗੰਗਾ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਨ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਗਤੇ ਜੀਤੇ ਜਮ ਲੋਕ ਅਪਦਿੱਤ ਜੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹਰ ਜਨ ਸਿਵ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਰਤੇ ਰਘੁਵੰਸ ਤਿਤ ਤਿਲਕ ਸੁੰਦਰ ਦਸਤ ਕਰ ਮੁਨਾ ਬਾਛੋ ਤਾ ਕੀ ਸਰਣੰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇ ਗੁਰ ਸੇ

अदृष्ट कारण करण सतगुर गुर सेव अलखगत जाके श्री रामदास तारण तरण प्रताप सदा गुर का कट कट प्रगास पया जस जन के एक पड़े सुने गावे प्रभाते करे स्नान स्नान करे प्रभात शुद्ध मन गुर पूजा बेद सहित करण कंचन तन होए पर सिपारस कौ ज्योत स्वरूपी ध्यान तरण जग जीवन जगन्नाथ जल तल में रया पूर्व विद कबरण सत गुर गुर सेव अलख गत जाके श्री रामदास तारण तरण जिनो बात निचल तू जानी ते जीत काल ते बचा तिन तेरे समुंदर उदर खिनेक मैं जल हर बिंब जुगत जग जग रचा कुंडलनी सूरज सत संगत परमानंद गुरु मुख मचा श्री गुरु साहिब सब उपर मन बच कर्म सेविए सचा वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो कमल लैन मदर बैन कोट सैन संग सोब कैत माज सोदा जिस दही पात खाहे जियो देख रूप अतनूप मोह महा मग पई किंकनी शब्द चंत काल खेल पाहे जियो काल कलम हुक्म हाथ कहो कौन मेट सके ईश भम ज्ञान ध्यान तरत ही चाहे जियो सत साल श्रीनिवास आदि पुरख सदा तू ही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो राम नाम परम धाम शुद्ध बुद्ध निरीकार बेशुमार सरबर क्यों चाहे जियो सुतर चित भगत हित पेख तरियो हरनाक्ष हरियो नाख बदार जियो शंख चक्र

आपी हसै आप ही चितवै, आपी चंद सूर परगासाओ, आपी जालो आपी थल सम्मनाओ, आपी गिया घट घट वासाओ, आपे नरे आपे पुन नारी, आपे सारे आप ही पासाओ, गुरमुख संगत सवै विचार हो, बाहो बाहो का बड़ा तुमासाओ, किया खेल वड़ मेल तुमासाओ, वाहे गुरु तेरी सब रचना, तू जल थल गगन

पंजनौ घटनौ समदाथ तरण तारण प्रवसोई नाना प्रकार जिने जग कियो जन मथरा रसनारस मथरा जन जान श्री सतनाम करता पुरख गुरु रामदास चित है बस है गुरु समदत्थ गए करिया ध्रुव बुद्ध सुमत सुमारण कौ धर्म सजा पहरंत सदा यग पुंजित रंग निवारण कौ मथुरा जन जानक।

संत दिहि सतसंगत संग सुरंगर तेजस गावत है। सौ पंथ तरन उथरनी थरो आपर हील विथार न थावत है। मथना फल भाग फले उनके मन इच्छित ही फल पावत है। रब की सुत को दिन त्रास कहाँ जो चरण गुरु जित लावत है। निर्मल नाम सुधा पर पूर्ण सावद तरंग प्रगट तिन आगर। गहर गंभीर अथाह यत वड सुफल सदा सब पिदरत नागर। संत मराल करे कंतु हलो तिन जम त्रास मिट्यो दुख कागर। कल जुग दुर्त दूर कर वेगो दर्शन गुरु सकल सुख सागर। जाको मन ध्यान सरै फिरत सगल जुग कबहू को पावे या तुम प्रगास को। भीर वाणी सहित विरांच जस गावै जाको शिव मन गहे नाथ जात कबलास को।

जय सतगुरु सिमरंता नैन की तिमर मिटी खेना। जय सतगुरु सिमरंथ उदय हर नाम दिनो दिन। जय सतगुरु।

रामदास गुरु वल्लभण मिल संगत थन थन करहो जय सतगुरु लग प्राव पाई सो सतगुरु सिमरहो नरहो जिन शब्द कुमाई।

कब कीरत जो संत चरण मुन लागहि तिन काम क्रोध यम को निद्रास जिवि अंग दो अंग संग नानक गुरु तिव गुरी अमरदास कै गुरु रामदास जिन सतगुरु सेव पदारथ पाए जाओ निस्वास रुहर चरण निवास ताते संगत सागन पाई पाओ मन हे तुम मलियाग्र प्रगट सुवास रूप रहलाद की।

गुरु अर्जन कर गुरु रामदास भगत उत आयो बड़फागी अनुमान जाऊ रिद शब्द बसायो गुरु अर्जन कर गुरु रामदास अनुभव ठहरायो जनक राज वरताया सतयुग आलीना।

गुरु रामदास गुरु जिन पारस परस मिलाए ओ। जय जयकार जास जग अंदर मंदर फाग सुगत शिव रहता। गुरपुरा पायो बड़ फागी लिव लागी मेदन भर सहता। है फंजन पर पीर निवार न कल सहार तुहे तो जस भगता। कुल

परम अतीत परमेश्वर कै रंग रंग जो वासना ते बाहर पै देखिया तथाम से आओ अपर परम्परा पुरख सो प्रेम लागो बिन भगवान तरस नाही और काम से आओ मथुरा गोपला सर्वमय अर्जुन गुरु भक्त कही तो पाए रहो मिले राम से आओ।

जग अवन न जाए महानता मैं अवतारे जागर जान किया तिनकी दुख कूट दूर गए मथ राज ने अमृत नाम पियो ही पद्धत दी मर चुकैरी मनाओ फिर फेद न जान बियाओ प्रताशिर दय गुर अर्जुन कह हर पूर्ण ब्रह्म निवास लियाओ जब लो नहीं फागल लारु दय तब लो प्रमति फिरते वो थाए जाओ काल कूर समुद्र में बूढ़त थे कब हूँ मिट है नहीं री पछताए जाओ अति विचार जह मथदा जग तारण को अवतार बनाए ओ जपियो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जो नगर बना गाए ओ कल

नित प्राण बाचिए वेद ब्रह्मा मुख गावे। अजय जावर सर ठोलै नाम अमृत मुख लियो गुरी अर्जन श्री क्षत्रिय आप परमेश्वर दियो।

करी नेवण न जाए थनी गच जे लगा गिड़बड़ी सखिए थालारी सी पीठ दे डिठ मैं मुंदन गर्भ थनी सुन मुंदे हर नाखिए गूड़ा बैणी अपार।

आगे नी कपरी चाड़ो जखड़ियो हाड़ो लहरी वैन लघेसरी सतगुर सो आलाई बिड़े डुबण नाहे भाओ नानक दुनिया कैसी होई साल क मित न रहियो कोई।

संतोष वाजे कर कर गुरमुख कर्म कमाओ निर्मल नावणो नानका गुरु तीरथ दरी आओ।

ओंकार सतगुरु प्रसाद अभ्यागति ने आखी है जिनके मन में फरमाओ तिनकी दित्ती नानकाओ तिहु जी हा धर्मा भय नरंजन परम पद का भीख कहोए दीका भोजन नानकाओ बिरला पाए गोय हुआ पंडित जूत की वीर फड़ा मुख चार नवाखंडा विच जानिया अपने चज विचार

जनहारो गुरु मुख गंतर सहज है मन चढ़िया दस आकाश दिथयुगन भुख है हरि अमृत नाम सुख वास नानक दुख सुख व्याप्त नहीं जिथे आत्म राम प्रगास काम क्रोध का चूलड़ा सब गल आई पाई एक उपज ही कविन से जाहे युक में आवे जाए जमण मरण ना चुकई रंग लगा दूजे पाए वंदना बंद भवाई आन करना कछु न जाए जिनको कृपा सारी आन तिना सतगुरु मिले आई सतगुर मिले उल्टी फाई मर जीवा सह सुफाई नानक भक्ति रत्या हर हर नाम सुमाए मनमुख चंचल मत है अंतर बहुत चितराई गीता करत्या बिरथा गया एक तिल था ए ना पाई पुन दान जो बीज दे सा धर्म राय कह जाई बिन सतगुरु जम कारण छुडाई दूजे पाए खोवाई जोबन जानता नादर नावी जर पहुंचे मर जाई बुत गलत मोहित है अंत बेली गो न सखाई सतगुरु सी भी सुख पाई नाओ बस मन जाई नानक सी बड़े बड़ भागी जे गुरमुख नाम सुमाई

हित प्यारो लोभी का विसा हो ना की जय जी का पार बसाई अंत काल तिथे तो है जिथे हथ न पाई मनमुखो सीती संग करी मोहे कालख दाग लगाई मोकाले ते लोभिया जसन जन्म गवाई सतसंग दर मीर प्राप गर नाम बसै मन जाई जन्म मन की मन उत्तर है जन नानक हर गुण गाय तोरा गर प्रो करता लिखया सो मेटना ना जाई जियो पिंड सब दिसदा प्रतपाल करे हर राय चोगल निंदक भुखे रुलमुए ये ना हथ न गिता उपाए बाल पाखंड सौ कर्म करहे मन हृदय कपट कुमाए थे तो श्री जो बीजी है सुअंत खलुआ गाए नानक की प्रभेनती हर फावे बख्श मिलाए।

कुमाई तन मन सौपे जी सौफाई लई हुक्म फिराओ जय वैसा वे वैसा भाई जय भी जय ते जाओ जानना एक हुक्म मानना जाननी फाई नानक हुक्म तिना मनाए सी फाई जिन्ना तुरे कुमाया नाओ तिन मिट हो बारा फाई तिन कहो सारो पलहा रह जाओ सी दाड़ियाँ सचियाँ जी गुरु चरणी लगन आने दिनो सी मन गुरु अपना आने दिनो आनंद रहना।

चूके भूख प्यास, जियो बिन सौ देश गाओ, सबकी दी कै पास, बिन भूलिया सबकी दी जान दाओ, खिया कह की चेर दास, नानक घड़घड़ी कुवरत दाओ, शब्द करी प्रगास, नानक तिसे बसंत है जी सतगुरु सी विसुमाई, हर बुठा मन तन सब पर फड़े, सब जग हरी आवल होई, सब देश दा बसंत है जित तन मन हरिया होई, नानक नाम विसदै जिन सिर जा सो कोई,

दय पन्न कड़न सुमरथ हर हट भी तू तू कर है बोले भली बाण साहिब सदा दूर है का गुच्ची करी पुकार।

सतगुरु कै उपदेश चारी गुंडा जी पव है बीत पड़ी जुग चारो नानक साचा पीटे अर मन बसै पावी मुख द्वारो नानक हुक्म वरतै खसम गाओ मत पवी फिर ही चल जितो मन मग सोक दोष दी सुख पुछे मितो फुले आप समझाए सी जाको नदर करी नानक नदरी वाहरी कन पुलहा करी सलूक महला चौथा इकू ओंकार सतगुरु प्रसाद मुड़ फागिया सुहागनी जिन्ना गुरमुखो मिलया हर राय अंतर जोत प्रकाशिया नानक नाम सुमाए वाहो वाहो सतगुरु पुरख है जिन सच जाता सोई जित मिल जायत की उतर है तन मन शीतल होए वाहो वाहो सतगुरु सतपुरख है जिसनु सामत सब कोई वाहो वाहो सतगुरु निर्वैर है जिस निंदा गुस्तत तुल होए

प्रेम समाया गुरमुखा सच्ची आस की जित प्रीतम सच्चा पाई जाए कबन हो वै फंग अंदर रही आनंद नानक सहज समाई जाए।

का दर्श देखे सवे आई मनिए सतगुरु परम विचारी जित मिल जाए तिसना भुख सब जाए ओ सदा सदा बलहारी गुरु अपने जो पुर सच्चा दी मिलाई नानक कर्म पाया तिन सच्चा जो गुर चरणी लगे आई जिन प्रिया सोने हो से सज्जन वै नाल अंतर वार हौ फिरा पी हृदय रखा समार जिन्ना एक मन एक चित थाए आओ सतगुर सोच तलाए तिन की दुख भुख यो मैं बड़ा रोग गया निर्दुख पहे लिवलाई गुण गा भी गण गुचर हे गुण मैं सवै समाए नानक गुरु पूरी ते पाया सहज मिलया प्रयाए मन मुख माया मोह है नाम न लगे प्यार कूट कमावे कूट संगरे कूट करे आहार पिख माया तन सच मरी अंत हो विशार कर्म धर्म सुज संयम कर है अंत लोभ विकार नानक मनमुख जी कुमावे सुथाए ना पवै दरगा हो खुआर सबना रागा बिच सो भला पाई जित बसिया मन आई राग नाथ सब सच है कीमत कही न जाए राग नाथ वारा इनी हुक्म न बूझा जाए नानक हुक्म बूझे तिना रास हो सतगुर ते सोजी पाई सक देते होया ज्योति सहरी दे जाए सतगुरु जी अमृत नाम है अमृत कहे कहाए गुरुमती नाम निर्मलो निर्मल नाम ते आए अमृत वाणी तत् है गुरमुख बसै मन आई हृदय कम प्रकाशया ज्योति ज्योत मिलाए नानक सतगुरु दिन को मिलो ना जिंतन मस्तक भाग लखाई अंदर तिशन अग है मन को भुख न जाए मोह कुटम सब कूड़ है कूड़ रे हाल पटाई अन चिंता चिंत वै चिंता बदा जाए जमन मरन चुकई ओ मैं कर्म कमाए गुरु सरनाई उभरै नानक ले छाए सतगुरु पुरक थाए दा सतसंगत सतगुरु पाए सतसंगत सतगुरु शिव दी अर मिली गुरु मिलाई

एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग माला राग एक संग पंच बरंगन संग अला पै आठो नंदन प्रथम राग पैरो वै करे पंच रागनी संग उचरहे प्रथम पैर भी बिलावली पुनिया की गावे बंगली पुन असलेखी की पई बारी ए पैरों की पंचो नारी पंचम हरख दिशाक सुना।

सुरमानंद पास कर आए, चंद्र बिंब मंगलन सुहाए, सरस थान ओ आहे बिनोदा, गावे सरस बसंत कमोदा, अष्टपुत्र में

बैरारी करनाटी तरी गवरी गावे या सावरी ते पाछे सिंध भी अलापी श्री राग सियो पांचो थापी सालू सारग सागरा और गोंड गंभीर अष्ट पुत्र श्री राग के गुंड कुंभ हमीर कष्टम मेघ।

सकल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पय सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित्र साधु गुर रहे।

मैं सु कोई न जाने तुमरा अंत ऊचे थे ऊचा भगवंत सगल समग्री तुमरे सूत्र तारे तुम ते हो सुआज्ञा तुमरे गत मित तुम ही जानी नानक दास सदा कुर तुद आ गैर दास हमारी जियो पिंड सब तेरा कहो नानक सब तेरी वड्याई कोई नाउ न जाने मेरा वाहे बोलो जी वाहेगुरु अरदास एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह श्री भगवती री सहाय वाह श्री भगवत जी की पातशाही दसवें प्रथम भगवती सिमरकै गुरु नानक ले त्याए फिरंगद गुर ते अमरदास रामदास हो सहाय अर्जुन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरै कर नौ निध आवे ताए सब थाए हो सहाय दसवा पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाए हो सहाय दसा पातशाहियाँ की जोत श्री गुरु ग्रंथ सरी दे पाठ दीदार दा ध्यान धरके बोलो जी पंजा प्यारियां चौहान साहिब जादियां चालियां मुक्तियां हठियां जापियां तपियां जिना नाम जपया वंड छकिया देख जलाई तेग वाही देख के अन्न डिट कीता तिना प्यारियां सचिया रेंद कमाई दा ध्यान धरके खास जी बोलो जी जिना सिंघां सिंघणियां धर्मे तो सीह दिते बंद बंद कटाए खोपरे लुहाइया चरखिया ते चढ़े आर नाल चरह गए गुरद्वारे सेवल कुरबानी कीते धर्म नहीं हारिया सिखी केसा सासा नाल निवाहे तिना दी कमाई का ध्यान धरके खालसा जी बोलो जे पंजा तख्तां सरबत गुरद्वारे ध्यान धरके बोलो जे पृथ्वी सुरत खालसा जी की अरदास जी सुरत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चित आवे चित आवन का सदका सर्व सुख होवे जहाँ जहाँ खालसा जी साहेब तहाँ तहाँ रचा रियायत देग तेग फतेह बिरध की पैज पंथ की जीत श्री साहेब जी सहाय खालसे जी के बोल वाले बोलो जी सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाहा दान भरोसा दान दाना सिरदान नाम दान श्री अमृतसर जी दे इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुगो टल धर्म का जयकार बोलो जी सिखा दा मन नीवा मत उची मत दा राखा आप वाहिगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दा तार जियो श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरद्वारे गुरधामा दे जिन्हों तो पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दन खालसा जी नूं बख्शो हे निमाणे दमान नेताणियां दे ताण न्योटियां दी ओट सच्चे पिता वाहिगुरु आप जी दे हजूर आप जी चरणा कमल विच अरदास है जिहा चीरी लिखिया तेहा हुक्म कमाहे कले आवे नानका सदे उठी जाहदे महावाका अनुसार सतगुरु जीओ आप जी डर करदे प्रीतवार बीबी इंद्रजीत कौर जी अरोड़ा सतगुरु जी आप जी वालों बख्शी हुई स्वास्थ्य रूपी पूंजी पूरिया करदा हो अकाल चराणा कर गए सन तिना के आत्म कल्याणता के निमित्त समूह परिवार तिना के पति बलवीर सिंह समूह परिवार वालों आप जी चरण कमलों का ओट आसरा लिया है आप जी के पावन पवित्र स्थाना परसों रोड तो तुरकी बाणी आई तिने सगली चिंत मिटा जी ते श्री अखंड पाठ साहब आरंभ किए सन आप जी की कृपा सदका बाणी आ तो मध मन तो संपूर्ण भोग पाए गए हैं बाणी पढ़दे को सेवा करदे को एक नहीं अनेक ही प्रकार दे गलतियां भुलो चुका देखी मैं बख्शिश करनी अगत कृपा करनी शुद्ध बाणी पढ़ने ते सेवा करन दी समर्था बख्शिश करनी सतगुरु जीओ आप जी की बख्शिश सदका रामकली सदे जाप होए हैं उपरंत अनासर छे पौड़ियाँ जाप किए गए हैं बाणी पढ़ते को सेवा करदे को अनेक ही प्रकार के गलतियां भुलों चुका दी खिमें बख्शिश करनी सतगुरु जी समूह परिवार वालों तो समूह संत संगत वालों आप जी चरणा कमल चरदास है कह कबीर सुन हो रे संतो खेत ही करो निबेरा अब की बार बख्श बंदे को बाहर ना पाव जल फिरा दे माँ वाक अनुसार सतगुरु जीओ
ਵਿਛੜੀ ਹੋ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਦੀਪ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਧਕ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਪੁਸ਼ਾਕ ਅਰਪਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਆਪ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਜਣੇ। ਇਹ ਸੁਖਤਾਬ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪੰਚਮ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜੀ ਸਚਕੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ, ਅੱਖਰਵਾਦ ਦਾ ਘਾਟਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ਼ ਕਰਨੀ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਕਾਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ, ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਨਾਮ ਤਾਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਗਿਆ ਪਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੇ ਚਲਾਇਓ ਪੰ ਸਭ।

नानक प्रभ शरणागते जाके सब किछ हाथ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुगो टल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज तिना दी पावन पवित्र चरण हजूरी अंदर सुभाए मान जुड़ बैठी सतसंग जी। बीबी इंद्र जीत कौर जी अरोड़ा सतगुरु जी वालों बख्शी हुए स्वासा रूपी पूंजी ने पूरियां करद होया इस संसार तो काचरण कर गए हैं। तिना दे निमित समूह परिवार वालों परसों रोड तो तुरकी बाणी आई तिने सगले चिंत मिटाई जी ते अखंड पाठ साहब आरंभ करवाए सन। सतगुरु जी की अपार कृपा मेरामत बख्शी सदका बाणी दे आदि मातो संपूर्ण भोग पाए गए हैं। सतगुरु जी कृपा करन बिछड़ी होरू नू सदीप अपने चरणा कमलों विच निवास बख्शिश करन पिछों परिवार नू भाणा मनण दा बल बख्शिश करन। हुण देग वरतेगी, देग वरतण तो उपरंत सत मेन हाल दे विच इलाही कीर्तन होणगे। संगतां चरणा विच बेनती है कि इस प्रकार एकागर चित होकर सज रहण दी कृपालता करनी जी, बेनती प्रवान करनी जी। आ कुछ समा सत्संग जाप करने की कृपालता करनी जी।

हर कीरत हमरी रह रास रहाउ। हर जन के वड भाग वडेरे जिन हर हर सरदा हर प्यास हर हर नाम मिलै त्रिपतस है मिल संगत गुण परगास।

जो सतगुर सारण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर

मिल जान नानक नाम परगास, राग गुजरी महला पंजवा। काहे रे मन चित वह उदम, जाया हर हर जियो परया। सैल पत्थर मह जंत उपाए, ताका रिजक यागै कर तरिया। मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया। सूके काष्ट हरिया रहाउ, जानन पिता लोक सुत बनता। कोए ना किस की तरिया, सिर सिर रिजक संबाहे ठाकुर। काहे मन पाओ करिया, ऊडे ऊड़ या वैसै कोसा। तिस पाछै बचरे शरिया, तिन कवन खुलावै कवन चुगावै। मन मह सिमरन करिया, साब निदान दास याष्ट सिदान। ठाकुर कर तल तरिया, जन नानक बाल बाल साध बल जाइए। तेरा अंत ना पारा वरिया, राग आसा महला चौथा। सो पुरख एक ओंकार सत गुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन, हर अगमा अगम अपारा। सब त्यावह सब त्यावह तुद जी, हर सच्चे सिरजनहार। सब जीव तुम्हारे जी, तू जिया का दातारा। हर त्यावह संत हो जी, सब दुख विसारण हारा। हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा। तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी, हर एक पुरख समाणा। एक दाते एक पेखारी जी, सब तेरे चोज विडाणा। तू आपे दाता आपे भुगता जी, हाँ तुद बिन अवर ना जाना। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुण आख वखाणा। जो सेवह जो सेवह तुद जी, जन नानक तिन कुरबाणा। हर त्यावह हर त्यावह तुद जी, से जान जुग मह सुखवासी। से मुक्त भए जिन हर त्याया जी, तिन तूटी जम की फासी। जिन निरभउ जिन हर निरभउ त्याया जी, तिन का भउ सब गवासी। जिन सेव्या जिन सेव्या मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी। से धन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी, भरे बेअंत बेअंता। तेरे भगत सलाहन तुद जी, हरे अनक अनेक अनंता। तेरी अनक करहें हर पूजा जी, तप तप हैं जप हैं बेअंता। तेरे अनेक पढ़हें बहु सिमरत शास्त्र जी। कर क्रिया खट कर्म करंता, से भगत भले जन नानक जी। जो भाव है मेरे हर भगवंता, तू आद पुरख अपरंपर करता जी। तुद जेवड़े अवर ना कोई, तू जुग जुग एको सदा सदा। तू एको जी तू निहचल करता सोई।
ਤੁਧਿਆਪੇ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਵਰਤੈ ਜੀ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਹੈ ਸੋ ਹੋਈ। ਤੁਧਿਆਪੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਾਬਿਓ ਪਾਈ ਜੀ, ਤੁਧਿਆਪੇ ਸਿਰਜ ਸਾਬ ਗੋਈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਕਰਤੇ ਕੇ ਜੀ, ਜੋ ਸਭ ਸਹਿ ਕਾ ਜਾਣੋਈ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ।

ना कोई। तू कर कर वेखै जानै सोए, जान नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा मोहल्ला पहला। तित सरवरडै पहिले निवासा, पाणी पावक तिन्हें किया। पंकज मोह पाक नहीं चालै, हम देखा तह डूबी अले। मन एक ना चेतस मूढ़ मना, हर विसरत तेरे गुण गलिया रहाउ। ना हो जति सती नहीं पड़या, मूर्ख मुगदा जन्म पया। प्रणमत नानक तिन की सरणा, जिन तू नाहीं विसरिया। आसा मोहल्ला पंजवा। भई प्रापत मानुख दे हुरिया, गोविंद मिरन की एह तेरी बरिया। अवर काज तेरे कितै ना काम, मिल साध संगत।

बचाई। कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता। किल बिख सकल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को शय करता। श्री असतुर जब पहे दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला। मन बाँछत फल पावै सोई, दुख ना तिसै ब्यापत कोई अडिल। सुने गुंग जू जाहे सुरस ना पावई, सुने मूड़ चित लाए चतुरता आवई। दुख दर्द पौ निकट ना तिन नरके रहै, हो जो जाकी एक बार चौपाई को कहै चौपाई। संबत सतरै सहस पणिजै, अर्ध सहस पुन तीन कहिजै। भाद्रव सुदी अष्टमी रव पारा, तीर सतद्रव ग्रंथ सुधारा। सवैया पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को वांख तरे नहीं आनेओ। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहें मत एक न मानेओ। सिमरत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहें

दोहरा। सगल द्वार कौ शाड़ कै गहो तुहारो द्वार, बाहें गहे की लाज अस गोबिंद दास तुहार। राम कली महल्ला तीजा आनंद एक ओंकार सत गुर प्रसाद। आनंद पया मेरी माए सत गुरु मैं पाया, सत गुर तां पाया सहज सेती मन वजियां वाधाइया। राग रतन परवार परियां शब्द गावन आईया, शब्दो तां गावो हरी के रा मन जनी वसाया। कह नानक आनंद होआ सत गुरु मैं पाया, ए मन मेरे आ तू सदा रहो हर नांदे, हर नार रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना। अंगीकार हो करे तेरा कार्य सब सवारना, सबना गला समरथ स्वामी सो क्यों मनहो विसारी। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नांदे, साचे साहेबा क्या नाहीं घर तेरै, घर तां तेरै सब किश है जिस देह सो पावै। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावै, नाम जिनकै मन वसया वाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नाहीं घर तेरै, साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया। कर शांत सुख मन आए वसया, जिन इच्छा सब पुजाइया। सदा कुर्बान कीता गुरु विटहो जिस दियां एह वडियाइया। कह नानक सुनो संतो शब्द तरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शब्द तित कर सुपागै, कर सुपागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया। पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया, तुर कर्म पाया तुद जिन को से नाम हर कै लागे। कह नानक तै सुख होआ तित कर अनहद वाजे, आनंद सुनो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल मसूरे, दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी। संत साजन भय सरसे पूरे गुरते जानी, सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहिया पर पूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूरे मुंदावणी महला पंजवा। थाल विच तिन वस्तु पइयो सत संतोख विचारो, अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबसे आधारो। जे को खावै जे को पुंचै तिसका होए उदारो, एह वस्त तजी नह जाई नित नित रख उर तारो। तम संसार चरण दग तरियै सब नानक ब्रह्म पसारो। श्लोक महला पंजवा।

जो किछ है सो तेरा। कदों चोलियां भरदियां ने जदों एडी निम्रता ते एडा प्यार आ जावे। महाराजा रणजीत सिंह किन्ना सत्कार गुरु दा करदे ने। अपने घर दे विच सब तो उच्चा स्थान गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दा। जदों भी अपने महलां विच आंदे ते सब तो पहला गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे दर्शन करदे ते फिर अपने बच्चियां नूं मिलदे सन। किते भी कार विहार ते जाना ते पहला सतगुरां कोलों आग्या लैंदे सन। एक दिन रणजीत सिंह जी बहुत भारी जंग लड़न वास्ते जा रहे ने ते जान तो पहला गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज अगे गल विच पा के पल्लू अरदास कर रहे ने। सतगुरु मेरे विच कोई सियाणप नहीं, मेरे विच कोई बल नहीं, तुसा बख्शिश करनी है मेरी जित हो जावे। इतिहास विचों की सोझी मिलती है, लखां दी फौज ते एक पासे महाराजा रणजीत सिंह। आज इस मैदानी जंग विच रणजीत सिंह दी जित हुई है, कोई भी बैरी अगे ना खलोया। बड़े बड़े राजे महाराजे रणजीत सिंह दी बड़ी शोभा कर रहे हैं। रणजीत सिंह तू ते कमाल कर दिती है, एडी तेरे विच सियाण किड्डी वड्डी जंग जित ली है। आ जदों हर एक ने शोभा कीती ते रणजीत सिंह दे मन विच भी मैल आ गई वे सचमुच ही मैं बड़ा वड्डा योधा, मैं किड्डा वड्डा

सत्संगियो जंग मंगयाणी दी गल है पाकिस्तान दी ए साखी। सतगुरां ने भाग लाए इहदे घर पुत्र होया। आपां संसार

दिन अपने बाप नू तके मार के बाहर कट देता है। तू मेरा प्यो नहीं, तू मेरा दुश्मन है। नौ भी किड्डे बोल कबोल बोल दी है। एडिया एडिया उच्चिया कोठिया ते बड़िया बड़िया कारा खलोतिया ने ते ए सेठ गेटा दे बार बैठा प्रसादे तो भी मोहताज है। आज पुत्र जिनू एडिया मनता नाल मनिया सी एक प्रसादा भी देण नू तैयार नहीं। बाबा नंद सिंह जी नानक सरवाले अज इस नगरी विच आए। बाबा जी दी सोभा सुनी ते दीवान लगा होया है। समाप्ति होई ते जाके बाबा जी दे चरण पकड़ ले। बाबा जी मेरे कोलों केड़िया भुला होया ने, जेड़े पुत्र नू एडिया मनता मन के लिया सी उन्हें धक्के मार के कढ़ दिता है। नौ बोल कबोल बोल दी है। आ जदों अपनी मां नू बचे माड़े बोल बोल देने ते मेरे तो सुनिया नहीं जाता। किड़ा गुनाह कीता है, किड़े जन्म दी सजा भुगत रहा हां। बाबा जी आखन लगे हुए सेठ ऐसे ही जन्म दी भुगतदा पिया। एक गल दस, पुत्र मंगिया गुरु नानक दे दरबार विचों ते खुशियां किहदे नाल मनाईयां सी? अपनी खुशी विच गुरु नानक नू बुलाया सी? शराबां ते कबाबां दे नाल तू दोस्तां नू मित्रां नू खुश कर सकदा है, गुरु नानक नू खुश नहीं कर सकदा। जिन्ना चिर गुरु नानक नू खुश नहीं करेगा उन्ना चिर तेरियां खुशियां कच्चियां ही रह जाणगियां, तेरियां खुशियां पक्कियां नहीं होंगियां। तू गुरु नानक नू भुला दिता। बाबा जी दे चरण पकड़ के हंजू केरे, बाबा जी सच ही मैं बड़े गुनाह कीते ने, देण वाले नू भुला दिता है। ते बाबा जी कहिंदे सो क्यों विसरे जिन सब किछ दिया। दोस्त मित्र रिश्तेदार तेनू खुशी वेले सारे याद रह गए ते गुरु ग्रंथ साहिब महाराज तेनू भुले गया। कदी गुरुद्वारे चक्कर मारिया है, कदी संगत विच गया है, दुख वेले किड़े गेड़े मारदा सी। हंजू केरे, बाबा जी मैनू बख्श देवो। ते बाबा जी ने सारी संगत नू बिने कीती भी सारे रल के अरदास करो, इस सेठ दी झोली सुख पै जान। ते संगत अरदास कर देवे क्यों ना खुशियां आ जान। सेवकां नू भेज के इस दे पुत्र ते नूह नू भी बुलाया। बाबा जी ने किन्ना चिर इन्हां नू सिख्या दिती। आखण लगे बचियो, मां ते प्यो रब रूप हुंदे ने। जेड़े माता पिता दी सेवा नहीं करदे उन्हां नाल रब रुस जांदा है। तू अज अपने बापू नू धक्के मारदा है ते कल नू तेरे पुत्र तेनू धक्के मारनगे। इंज चंगा नहीं बाप दी सेवा करया कर। आ बाबा जी बचन कर देन ते कौन मोड़ सकदा है। आ सतसंगियो, परी संगत दे विच अपने बापू दे चरण पकड़ ले। नहीं बई, देन वाले नू कदे नहीं पलाना। सब कुछ उसदा दिता होया है, सारियां रहमतां उसदियां दित्तियां होईयां ने। ते साडा किड़ा चंद्रा सवा है। आपां जांदे हां ना गुरु ग्रंथ साहिब जी दी हजूरी ते नमस्कार करन वास्ते जदों अपना पर्स कढ़दे हां सब तों पहलां तकदे हां बई फटिया नोट केड़ा है। जे फटिया नहीं ते सब तों छोटा नोट केड़ा है। बेशक गुरु साडे पैसे दा भुखा नहीं, पर गुरमुखा ओ प्यार दा भुखा है। तेरा किहो जिहा प्यार है गुरु लई छोटे ते फटे नोट टोलदा है। नहीं बई, सारा कुछ उसदा दिता होया है। कदों खुशियां आउणियां ने जदों सचमुच ही

तेरा है, मेरा कुछ नहीं। आपा तकिया है साडा किहो जिहा सुभा है, घर विच गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का प्रकाश भी है, ते उसे घर दे विच शराबां ते कबाबा भी है। नहीं बई तू गुरु की नरादरी करदा है, सारा कुछ देण वाला ते ओ है। अपने कमरे वड्डे वड्डे, अपने कमरे विच सोहणे गलीचे ते वड्डे कमरे, ते गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश पौड़ियां थले छोटे छोटे कमरे विच कर देता है। बाबा ईसर सिंह जी नानक सर वाले बख्शिश करदे सन, ये सचमुच गुरु नानक है, कोई मेरियां अखां नाल तक लवे, साडियां नजरां विच फर्क है। जे ये कुछ करदे हां प्रगट गुरां की देह करके नहीं मनदे। ओए गुरु सिखा, खुशियां ते तेरे मगर मगर फिरनगियां, तू किते गुरु नूं प्रगट गुरां की देह मन के ते देख, इसका सत्कार करके ते देख। तेरे घर दे अगे गुरु ग्रंथ साहिब जी की सवारी लंघनी है, ते बाबा जी कहिंदे सन सारी गली विच झाड़ू ला दे, लोकां नूं पता लग जावे कि अज इस दे मालक ने लंघना है, अज इस दे गुरु ने लंघना है। एवें उपरों उपरों आखी जांदा है वे सारा कुछ तेरा है। आ संसार विच तको घरां विच कोई समागम है ना, ते जदों बाजार कपड़े लैण जांदे हां अपने वास्ते हजारां रुपईयां दे कोट पेंट, ते गुरु वास्ते ये दुकानदार नूं की आखदा है भी कोई 51 रुपईयां दा रुमाला गुरु वास्ते दे दे। ओए गुरसिखा की तेरी भावना नूं होया है, जिन्हें तेनूं सारा कुछ दिता उहदे बदले जदों तू रुमाला वस्त्र खरीदने ने, उदों क्यों जेब कुटदा है, उदों क्यों सरफे ते उतर आया है। नहीं बे दिलों आख मनों आख सतगुरु सारा कुछ तेरा है, मेरा इस विच

बड़ा बड़ा राजा बहादुर शाह गुरु गोविंद सिंह जी महाराज दरबार सजाया होया है। आके नमस्कार बहादुर शाह ने की थी। इदे वल तक के गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की मुख दे विचो निकलिया धन गुरु रामदास। बहादुर शाह बड़ा हैरान होया, संगत विच बैठा सोची जाता है। अगे भी कई बार सतगुरां नूं मिलिया, होर भी संगत आंदी है, पर जदों मैं मिलदा हां ते किड्डे प्यार विच भिज के सतगुरु आखदे ने धन गुरु रामदास। भी इस गल दे पिछे किहड़ा राज छुपिया है, बैठा सोची जाता है। सतगुरु आखन लगे, क्यों बई बहादुर शाह केड़ियां सोचां सोचदा है, की सोचदा है? सतगुरु तुसी दिलां दियां जानन वाले, तुसी बुझ गए हो, जान गए हो मैं की सोचदा। ते सतसंगियो, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज असंगत नू एक केड़ी गाथा सुना रहे। किंदे ओ समा सी तन गुरु रामदास पातशाह श्री अमृतसर दे विच कार सेवा करा रहे सन। गुरु रामदास महाराज मौत संगत सेवा वास्ते आंदी, हुण भी सेवा आंदी है ना। कुछ बंदे निष्कामी होंदे ने ते कुछ सेवादार जिन्हां ने दिहाड़ीदार होंदे ने, अपनी मेहनत मजदूरी लेंदे ने। इसे तरह कुछ सेवादार निष्काम सेवा करन वाले ते कुछ दहाड़ी वाले आते। सारा दिन सेवा हुंदी, जदों पेंदी शाम ते गुरु रामदास पातशाह आप आते, दो लाइना लग जांदियां। एक कितार दे विच ओ खलो जांदे जिन्हां ने निष्काम सेवा कीती है, ते एक पासे जिन्हां ने दिहाड़ी लैनी। सब तो पहला गुरु रामदास पातशाह निष्काम सेवकां कोल जांदे, कल्ले कल्ले नूं मिलदे ते किड़ियां किड़ियां असीसां देंदे। फिर जिन्हां दी जिन्नी भी दहाड़ी बनदी है दहाड़ीदार वल उधर जांदे ते जिन्ने जिन्ने किसी दे पैसे बनदे ने दे दिंदे। आ इक दिन दी गल है, शाम दा वक्त है, दो लाइनां लगियां होईयां ने ते सतगुरु रहमत करन आए निष्काम सेवकां वल। ते सतगुरु की देख रहे ने, एक बुढ़ा बाबा अत दी बजुर्गी जेड़ा हर रोज शाम नूं दहाड़ी लै लैंदा है ते अज निष्काम सेवकां विच खलोता है। सतगुरु निष्काम सेवकां नूं मिल रहे ने, असीसां दे रहे ने। जदों इस दे कोल गए बाबे दे, बाबा तैनूं भुलेखा लग गया है, ये सारे सेवक निष्काम ने, ओह लाइन लगी हुई है, तू उधर खलो मैं उधर भी आवांगा, तू भुलेखे विच लग गया। सतगुरु बोली जांदे ने, बाबा अखां विचों हंजू केरी जांदा है, मैले फटे गल विच कपड़े, अत दी बजुर्गी है। सतगुरु रोज पैसे लै जांदा मुक जांदे ने, आज मैं किसे दे कोलो सुनिया है दुनिया दा धन मुक सकदा है, पैसे मुक सकदे ने, पर गुरु रामदास पातशाह तेरी रहमत नहीं मुकदी। अज बख्शिश करो, रो के आख रहा है बाबा, पैसे लेंदा हां, गरीबी है, मजबूरी है, कित्थों खावां, अज बख्शिश करो, अज दी दिहाड़ी दे मैं पैसे नहीं लेने, अज दी दिहाड़ी दी मैनू बख्शिश दे दे। ते गुरु रामदास पातशाह रहमत दे घर विच आए,
ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹੱਥ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜਾ ਬਾਬਾ ਤੈਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਾ ਬਾਬਾ ਤੈਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਸੰਗਤ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ

पर मैनू एक गल दसो, इस गल दे नाल मेरा की संबंध? ये गल दसो। ते गुरु गोविंद सिंह जी महाराज प्यार दे विच भिज के नेत्र बंद करके आखन लगे, बहादुर शाह ओ बुढ़ा बाबा कोई होर नहीं, वो तू ही हुई सी जो एक एक प्रसादे नू तरसदा रहिंदा सी, तू ही हुई सी। अज जन्म लैके सारी दुनिया ते राजा राज करदा है, किड्डे किड्डे नौकर चाकर तेरे अगे हाथ बन्नी खलोते ने, आ देख लै गुरु रामदास दियां रहमतां तेरे कोल अज तक नहीं मुकियां, अज तक नहीं मुकियां, पता नहीं किन्ना चिर तू खानियां ने, किन्ना होर सुख भोगना है, कौन जाने गुण तेरे चरणा ते डिग पिया, तेरी हो गया अज बहादुर शाह है सतगुरु, तेरे गुणा नू कोई नहीं जान सकता, तेरिया रहमतां नू कोई नहीं जान सकता। सो सतसंगियो बख्शिश हो रही है, इसीलिए गुरसिख नू ए हुक्म है, तू पुन दान करदा रहा, तू गरीब दे मूह दे विच पांदा रहा, जिथे धन कमा के अपने बच्चियां दे मुख पांदा है ना, गरीब दे मूह विच भी पाया कर। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की आख रहे ने, गोलक राखे ने जो शलका करे व्यापार, कहे गोविंद सिंह लाल जी भोगे नरक हजार। जेड़ा दसवंध नहीं ना कटदा वो जीवदे जी भी नरक भोगदा है, उदा सारा धन हॉस्पिटलां विच कचहरियां विच मुकदमियां विच ही लग जाता है, भोगे नरक हजार, हजारां नरक जीवदे जी भोगदा है। नहीं बई, नेक कमाई करके किसे भुखे नू भोजन छका दिया कर, किसे तन दे नंगे नू कपड़ा पहना दिया कर, किसे गरीब दे बच्चे दी पढ़ाई दी जिम्मेवारी ले लिया कर, किसे गरीब नू किताबां ही ले दिया कर, किसे गरीब दी बच्ची दी शादी ते पैसे खर्च दिया कर। गुरु घर विच तन दी लोड़ है, उथे सेवा ला दिया कर। दसबंध कढ़न दे कई तरीके ने, कई तरीके ने, पर जरूर कढ़िया कर, कोई फर्क नहीं पैंदा। महीने दे विच 30 दिन ने, ते 2 दिन दी कमाई ला दिया कर गुरु लेखे, ते सतगुरु बख्शिया करेगा। बाबा नंद सिंह दी बख्शिश करदे सन, औखा वेला आ जावे ना ते कदी भी दसबंध नहीं रोकना चाहिदा। देखो बाबा जी दे किहो जे बचन ने, औखा वेला आ जावे कदी भी दसबंध ना रोको, फिर सौखा वेला छेती आ जांदा है, सौखा वेला छेती आ जांदा है। कौन जाने गुण तेरे, ऐ मेरे मालक, तेरे गुणा नू कौन जान सकता है।

ज्ञानं उचेते उचो जानिजे प्रभ तेरो धन मान तन तेरो प्राण एके सूत है जनं कवन उपमा देव।

कीमना पवै अमुलो जे कृपाल होयो गोबिंद सर्व सुख तिन्हू पाए हर गुर नानक जिन परस्यो ते बहुड़ फिर जोन नाए जे कृपाल।

अविनाशी जीवन को दाता सिमरत सब मल खोई गुण निदान भगतन को बरतन बिरला पावे कोई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु चरणा विच विराजमान गुरु प्यारी साध संगत जी, अज दा जो पावन हुक्म सतगुरु जी ने बख्शिश कीता है सोरठ राग विच पंजवें पातशाह श्री गुरु अर्जुन देव सतगुरु जी दे मुखारबिन तों उच्चारण कीता होया, श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दे पावन अंग 617 पर सुशोभित है जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

0: अकर्मन अपर्मन अगंजे अलेखे
1: नमस्सल्पनामे नमस्समस्सल्पनासे
0: अगंजुल अनामे समस्तुल्लिवासे
1: कामं विभूते समस्तस्वरूपे
0: कुकर्मन परनासी से धर्मन बेभूते
1: सदा सच्चिदानंद सतरंग पनासी
0: करिमुल कलिंदा समस्तुल्लिवासी
1: अजाए विभूते गजाए गनी में
0: हरियन करियन करिमुल रहीमे चतर चक्रवर्ती चतर चक्रपुत्र स्वयंभव शुभम सर्वदा

वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। पूर्ण हो हमारी आशा तो भजन की रहे प्यासा। सेवक से हमारे कार्य चुन चुन सत्र हमारे मारिया है। पूजो सदा हमारे पच्छा श्रीय सुचो करियो रक्षा। दीन बंधु संत के हंता तुम हो पुरी चतुर्दस कंता। काल पाए कर विषम प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जमन का सब लोग सवारा, नमस्कार है ताए हमारा। आदंते के अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। सिकन को सब गुण सुख दियो, सतरन को बल मोबत कियो। चीटी ते कुंचर असूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। एक एक की पी पछाने, कट कट के पट पट की जाने। जब आकृत करत हो कभू, तुम्हें मृत देकर सब हूँ। तुम सभी ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अकालम। ताका मूड उचारत पेदा, जाको पेर न पावत पेदा। महादेव को कह सदा से निरंकार का चिंतन है देव। तुम्हारा लखाना जाए पसारा, कैबित सजा प्रथम संसारा। अंडर जेर से तच कीनी, उत्पुट खान भाव रच दीनी। सगरी श्रीष दिखाए चंबव, आज जुगात सुरूप से अंबव। दूजते उद्वत उत्पाता, सकल मलेश करो रंकाता। पूर्व जवन पर परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब तारे। रचा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट करे तब काला। दिद सिद्ध कर मो सब होई, दूसर छाछ वह सके न कोई। जिन्ना नाम ते हारो कहा, दार दुष दो तेरा। सर्थो नो हो सहाई, दुष दो तेरे हो बचाई। किल भी सगल दे को हरता, दुष दोखियन पूछे करता। मन बाछत फल पावे, सोई दूख न तिसे ब्यापत कोई अडिल। दुख दर्द पौ निकट ना ते नर के रहे, हो जो या की एक बार चौपाई को कहे चौपाई। पादर सुबिय समीर विवारा, तीर सतत्र व्रन सुधारा सोया। राम रहीम पुराण कुरान, ने कहे मत एक ना मान्यो। श्री सुपान कृपा तुमरी, कर मैं ना कहो सब तोहे बखान।

0: माता के उदर में प्रतिपाल करे, सो क्यों मनो विसारिये।
1: मनो क्यों विसारिये, वरदाता जे अगर मह हार पहुंचावे।
0: कोई न सकी जिसनु अपनी लिव लावे,
1: अपनी लिव आपे लाए, गुरमुख सदा समालिए।
0: है नानक ए वरदाता, सो क्यों मनो विसारिये।
1: जैसी अगन उदर में है तैसी बाहर माया,
0: माया अगन सब इको जेही करते खेल रचाया।
1: जात इस पाणा ताज में आपर वार पला पाया,
0: लिव चुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया।
1: ए माया जित हर विसरे मोह जय पाओ दूजा लाया।
0: कहे नानक गुर प्रसादी जिना लिव लागी तिन्नी विचे माया पाया।
1: पर आप मुलक है मुल न पाया जाए,
0: न पाया जाए किसे विटो रहे लोक विलाए।
1: ऐसा सतगुरु जे मिले तिसनो सिर सौपिए विचो आप जाए।
0: जिसदा जियो तिस मिल रहे हर वसे मन आए।
1: हर

0: सतगुर प्रसाद पातशाही दसवें तब प्रसाद सवैये दीनन की प्रतपाल करे नित संतो बार गनी मन गारे
1: पशु नग नाग नादव सर्व समय सबको प्रतिपारे।

0: खंड पर चंड पहारन पूरल प्रेम की प्रीत संभारे
1: पार न पाए सके पद्मापत वीर कते व पेदोचार
0: रोजी राज बिलोकत राजक रोग रोहान की रोजी नटारे
1: तंग को रंग पुजंगम भूत भवेख भवान बनाए
0: देव खपे अनलेम न पेव लख्यो प्रम से परमाए
1: प्राण क देव कुरान सेव थके कर हाथ नाए
0: पूरन प्रेम पर भाव बिना पद से किन श्री पद्मापत पाए
1: आद अनंत गादत वैक्सो भूत भवेख भवान पहे
0: अंतविहीन अनातम आप अदाग अदोक अचित्र अच्छे हैं
1: लोगन के करता हरता जल में थल में परता प्रभ है
0: दीन दयाल दया कर श्रीपद सुंदर श्रीपद महापते हैं
1: काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न शोक न भोग न पह है
0: देवहीन स्नेह सबोतल ने

0: सब हाथ परे हर हाथ आयो।
1: पाए सके नी पार उमापत सिद्ध सनात सनातन त्यायो।
0: ध्यान धरो देखो मन में जे को हम तो सबे जग शायो।
1: वेद पुराण देव कुरान पे निर्पाण सबे पचहारे।
0: न पाए सके अन वेद को खेदत है अनछेद पुकारे।
1: राग न रूप न रेख न रंग न साख न शोक न संग तिहारे।
0: अनाथ अगाध अभेद।

बोलो जी वाहिगुरु। अरदास इको ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाह दसवें। प्रथम भगवत सिमर कै गुरु नानक ले ध्याए। फिरंगत गुर ते अमरदास रामदास हो सहाय। अर्जन हर गोविंद नौ सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ध्याई जिस दिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरियाँ कर नानद आवे ताए। सब थाई हो सहाय। दसवा पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हो सहाय। दसा पातशाहियाँ दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दीदार दा ध्यान करके बोलो जी। पंजा प्यारियां चौहान साहिब जातियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हें नाम जपया वंड छकिया देख चलाए तेग बाहे देख के अन डिठ कीता तना प्यारियां सच्यारें दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म तो सिह दिते बंद बंद कटाए खोपर लुहाइयां चरखियां ते चढ़े आरिया नाल चिराए गए गुरद्वारे दी सेवा लई कुरबानी कीतियां धर्म निहारिया सिक्के के सा स्वासा नाल निभाही तिन्हां दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान धरके बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चित आवे चित आवन का सदका सर्व सुख होवे जहाँ जहाँ खालसा जी साहेब तहाँ तहाँ रचा रियायत देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहेब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान बेसाह दान भरोसा दान दाना सिरदान नाम दान श्री अमृतसर जी दे इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुग जुग टल धर्म का जयकार बोलो जे। सिखा दा मन नीवा मत उची मत दा राखा आप वाहगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दा तारियो श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरद्वारा गुरधामा दे जिन्हों तो पंथ नू विछोड़िया गह खुले दर्शन दार ते सेवा संभाल दन खालसा जी नू बख्शो हे निमाणिया दे माण नितानिया दे ताण न्योटियां दी ओर सच्चे पिता वाहिगुरु आप जी दे हजूर आप जी दे चरणा कमला विच अरदास है आप जी दी कृपा सदका दीवान सजे सजे हो दीवाना दे अंदर आसा की वार दे कीर्तन होए आनंद साहब दी छे पौड़ियां दे जाप कीते गए हैं बाणी पढ़दियां कोलों कीर्तन करदियां कोलों एक नहीं अनेकां प्रकार दे गलतियां भुलना चुका दिखे मैं बख्शिश करनी अगत कृपा करने शुद्ध बाणी पढ़न अते कीर्तन कर दी समर्था बख्शिश करने सतगुरु जीओ बड़ी सोहनी बाणी सचखंड साहब विखे प्रवानित करनी बड़ी सोहनी बाणी का भाव समूह संगतां दे हिरदियां विच वसाउणा आई संगतां दी हाजरी तिल फुल भेट हाजरी अपने दत्ते प्रवान करने जी समूह संगतां नूं दरों कोरों सिखी सिदक भरोसा अते नाम दी दातां बख्शिश करनियां आप जी दे हजूर पंचम कड़ाह प्रसाद जी सच के हाजिर है दर प्रवान होए प्रसाद समूह संगत विच वरताउण दी आग्या बख्शिश करनी कृपा करो पवित्र बाणी विचों समूह संगतां नूं हुकुना साहिब बख्शिश करके निहाल करो अखर वादा घाटा भुल चुक माफ करने सुरत दे काज रास करने सही प्यारे मेल जिन्ना मिलिया तेरा नाम चित आवे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

गुरु प्यारियो, हुने जो आप शब्द सरवण करोगे वो भगत कबीर जी का उच्चारण किया होया है। इस शब्द की रहाओ वाली तुक जानी जानी रे राजा राम की कहानी, अंतर जोत राम प्रगासा गुरमुख बिरलै जानी। ये पंक्ति जिस सारे शब्द का केंद्रीय भाव है, भगत जी दसते हैं कि जो मनुख अपने आप में गुरु के हवाले करके नाम सिमरदा है